0: ठीक से याद से मेरो कर दा मेरो रिसीविंग मेरो कॉल फॉर प्रीमिसेस रिपोर्ट्स फॉल्स अलार्म ओवर थैंक्स फॉर सेंडिंग अप सेटिंग नो मोर ओवर मेरो रोजर आउट यू 6 आउट ऑफ कैनी बेल स्टैंड डाउन ओवर
1: Kenny Bell acknowledges the Velvet Radio.
0: Kenny Bell, roger out.